మిత్ర బశిష్ట లోమస మను మీరా సబరి కబీర్దాస్ రవిదాస్ వర్తమాన అవస్థగా పని జో గురు హున్ ఉహాహరులే ఏక అర్కాలే సంగ తత్వజ్ఞాన లిఏర మాత్రే అగాడి బడేకో తబ మహాపురుష మహాత్మా గురు కహలాయించన్ మనే సత్యయుగమా శివజీలే सुखदेव स्वामी स्वामीसित ज्ञान लिएको छ त्यो उसमा पुराणहरूमा उल्लेख छ हामी हेर्न सक्छौ त्रेतायुगमा श्रीराम प्रभुले ऋषि वशिष्ठ कहाँ गएर तत्व ज्ञान लिँदा रमे रामको आवास भएको छ द्वापरयुगमा कृष्णले शान्तिमेरी गुरुसित तत्व ज्ञान लिँदा अनि कृष्णले त्यही ज्ञान रणभूमिको मैदानमा आफ्ना भक्त अर्जुनलाई दिएको भने राजा जनक जो जनकपुर नेपालको जनकपुरमा जन्म भएर आज विश्वमा विदेही राजा जनक भन्ने इतिहास छ उहाँले 14 वर्षका ऋषि अष्टभक्तबाट तत्वज्ञान लिएर रामका भक्त बनेर विदेही राजा जनक भएका हुन् त्यसको कहानी लामो छ समय हुँदैन आदरणीय श्रोता महानुभावहरू म अधिक समयको सहारा लिने छैन सबैको दिन शुभ बितोस् सबैको मन ईश्वरतिर उन्मुख होइरोस् मती कसैको पनि विमति र कुमति नहोस् परमात्मासँग यी प्रार्थना सद्गुरूसँग गर्दै दुई लाइन भजन राख्ने इच्छा गर्दै म आफ्नो शब्दलाई पूर्ण विराम दिन्छु नमस्कार प्रणाम।

बिहान 11 बजे कर्णाली नदी स्थित कैलाशेश्वरमा अन्तिम संस्कार गरिने सम्पूर्ण आफन्तजनलाई जानकारी गराइन्छ। भाई दिलबहादुर बम, छोराहरू बम बहादुर बम, हिक्मत बम, गोपाल बम, चन्द्रप्रकाश बम लगायत सम्पूर्ण परिवार।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जार सेखल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई।

0: यी गोङ्गुवा बुढोहन कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
1: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रैलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मुनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
2: मिलन अल्मुनियम एंड ग्लास हाउस जमरकी उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
3: डोटीको मेल्टा निवासी हाल जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा बसोबास गरिरहनु भएका 78 वर्षीय नरबहादुर बमको निधन भएकाले असोज 14 गते बिहान 11 बजे कर्णाली नदी स्थित कैलाशेश्वरमा अन्तिम संस्कार गरिने सम्पूर्ण आफन्तजनलाई जानकारी गराइन्छ। भाइ दिलबहादुर बम, छोराहरू बम बहादुर बम, हिक्मत बम, गोपाल बम, चन्द्रप्रकाश बम लगायत सम्पूर्ण परिवार। जिगापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौ, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
3: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणाली द्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पुर्दा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
2: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
5: मैनै जाइ, उहाँ आफ्न अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
4: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, यी पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई टवाई तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: काफी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर भर रही थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटाका कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरास बाटीन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: हेलो बहनी कता हो तिमी था कि नहीं सीजी कंपनी को वाई वाई जिंक 15 रुपया में एक पेटी रूपान 560 में उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ तिमीले कति में किन्यौ
4: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 में किने
3: 600 रुपया किन हाल्नु पर्यो 560 में त ब्लक नंबर 14 में रहेको हरिलाल किराना पसल में रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ त्यो पनि सीजी कंपनी को गुणस्तरीय चाउचाउ र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपया में आउँदैछ नि त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ फेरि 500-600 रुपया वाईवाईमै किन हाल्ने 460 में मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ त्यो पनि वाईवाई सीजी कंपनी को र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुस् है होलसेल र खुद्रा को दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ आधिकारिक विक्रेता
4: हरिलाल किराना पसल ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टिकापुर कैलाली संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट संपर्क नम्बर 98 48 40

0: छिछी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फे का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनऊ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 0 26
2: डोटीको मेल्टा निवासी हाल जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा बसोबास गरिरहनु भएका 78 वर्षीय नरबहादुर बमको निधन भएकाले असोज 14 गते बिहान 11 बजे कर्णाली नदी स्थित कैलाशेश्वरमा अन्तिम संस्कार गरिने सम्पूर्ण आफन्तजनलाई जानकारी गराइन्छ। भाइ दिलबहादुर बम, छोराहरू बम बहादुर बम।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। दबाव बढ़ल पाछे टीकापुर नगरपालिका के बजट खर्च करना तैयारी, अब धीरे से खर्च प्रणाली ने बिठुन। वीरेन्द्र विद्या मंदिर मावी के कैंपस व्यवस्थापन समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारी हुकरण के शपथ ग्रहण तथा पदस्थापन। सामाजिक जवाबदेहिता अभियंता विकास केलक प्रशिक्षण प्रशिक्षक कार्यक्रम रोशनी जैसी से विपन्न बाल बालिका हुकरण स्टेशनरी सरसफाई सामग्री सहयोग। ओ जानकी गांव पालिका में स्मार्ट शौचालय के उद्घाटन, सरसफाई में ध्यान देना सुझाव। टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नागाजी आर्थिक वर्ष शुरू हुई लग करीब 2.5 महीना पाछे बजेट खर्च क्या तैयारी देहलबाट स्थानीय तह के बजेट खर्च करना नगर प्रमुख से प्रमुख प्रशासक के अधिकृत खर्च के अख्तियारी देह पर्ना व्यवस्था बा। मनु नगर सभा हुई बेर बहुमत समेत अपना उपकरण के उपस्थित में नहीं हुई लग पुनः नगर सभा हुई पर्ना तर्क करती अलग नागरजी अंतत खर्च के अख्तियारी देहल के हुई। कार्यपालिका सदस्य हुकरा भदौ 17 गते नई खर्च के अख्तियारी देना लिखित निर्णय करल पाछे नागरजी मन नहीं रहे बजेट अख्तियारी नहीं देखे दैनिक कार्यालय संचालन कर्मचारी तलब सामाजिक सुरक्षा लगायत के खर्च हुई नहीं सकल रहा। कुछ दिन आगे सर्वदलीय भेला से बजेट खर्च के अख्तियारी देना वा काम नहीं करना हुई से फेन राजीनामा समेत मांग कर रहकल से सोमवार के दीवा खाजा के रकम फे भुगतानी नहीं हुई कहती नगर विकास नगर के विद्यालय के प्रधानाध्यापक हुकरा अके साथ नगर पालिका में धरना कार्यपालिका सदस्य हुकरण दबाव दे गेल रहा। वस्तह के टीकापुर नगर पालिका के युवा हुकरण फे समेत दबाव देहल पाछे कार्यवाहक प्रमुख से अख्तियारी पत्र लिख के देहल रहे। कार्यवाहक के समेत प्रमुख नागरजी से अपन माग नगर सभा में हुईल से फेन जनता हुकरण के समस्या देख के अख्तियारी देहल बता गिल बा। प्रमुख प्रशासक के अधिकृत ममता बास्तोला से बजट के अख्तियारी पाइल पाछ दिदस सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिक्षक कर्मचारी उपकरण के तलब भत्ता भुगतानी देना काम शुरू करना हो दशैं आगे नई खर्च प्रणाली नियमित हुई बटोले बाट मुद्दा मामला नई करना 2083 भदौ 17 गते के कार्यपालिका के निर्णय हिउदे अधिवेशन मन से पारित करना कहना कागज देलक अपना उपरा हस्ताक्षर कर देलक बलिराम चौधरी बटोले बाट टीकापुर नगर पालिका के नगर प्रमुख उप प्रमुख दोनों पद खाली रह पाछे 2082 फागुन में कार्यवाहक नगर प्रमुख चुनगिल नागरजी 2083 जे 14 गते कार्यपालिका के बैठक के पद से हटा के बलिराम चौधरी है लव कार्यवाहक नगर प्रमुख चुनगिल रह निर्णय विरुद्ध।

0: नागरजी अदालत गैल पाछे सर्वोच्च से अल्पकालीन अंतरिम आदेश जारी करती टीकापुर नगर कार्यपालिका के जेठ 14 गते के निर्णय तत्काल कार्य नहीं करना गहटी रोक लगाइलो। यह सुनवाई आगामी मार्च से हुईना कहल बतागिल बा। कार्यपालिका में बहुमत सदस्य से नागरजी है हताश देखलक मनो अदालत से और कार्यवाहक प्रमुख चुनना कार्यपालिका के निर्णय कानून नहीं करना कहल पासे। असार 17 गते सभा में ज्येष्ठता सदस्य जयराम थारू के अध्यक्षता में नगर सभा हो के आर्थिक वर्ष 2083-84 के वार्षिक तिथि कार्यक्रम तथा 1,03,00,00,000 के बजट पारित करल रह। जानकी गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी मनै स्वस्थ रहलकलक सरसफाई में ध्यान देना आवश्यक रहल बटोले बाटै। जानकी गांवपालिका वार्ड नम्बर 3 के निर्माण करगेलक स्मार्ट शौचालय के उद्घाटन करते वहां ईसिन बटोले घोई। वहां सार्वजनिक ठाव में सार्वजनिक शौचालय आवश्यक रहलक ओर से पालिका के स्मार्ट शौचालय निर्माण केलक पहल करगेलक बताइल बा। जानकी गांवपालिका वार्ड नम्बर 9 के वार्डाध्यक्ष खगेन्द्र भंडारी यी खेलकूद के स्थल में पालिका से समेत पालिका स्तरीय खेलकूद हुईबेर शौचालय के समस्या हुईना रलक ओर से शौचालय निर्माण के लग अपना हुकरा जोर देहल रहे। वार्ड नम्बर 4 के वार्डाध्यक्ष दीपेन्द्र कठरिया से सार्वजनिक शौचालय बनना मजा काम हुईल बटोले बाटै। जानकी गांव पालिका वार्ड नम्बर 3 के वार्डाध्यक्ष सुरेश चौधरी शौचालय निर्माण के लग सहयोग कर रकमा धन्यवाद देले बाटै। कार्यपालिका सदस्य इन्द्र सोपसे शौचालय निर्माण में शुरू हुईलक समस्या रलस फेन यहां के नागरिक खेल खेलना बाल बालिका हुकरान के सहज हुईना रलक ओर से अपना हुकरा निर्माण केलक पहल करल बटोले बाटे। हजारी खाने पानी के अध्यक्ष लाल बहादुर थापा से सार्वजनिक शौचालय के निर्माण संगे यी ठाव में सार्वजनिक हल रलस कार्यक्रम में सहयोग पुग्ना बटोले बाटे। बरघर किशोर कुमार चौधरी फे अपना गांव शौचालय बनैलकमा समेत धेर धन्यवाद देती संरक्षणमा चुनौती रहल बटोले बाटै। सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुईल पाछे स्थानीय नागरिक फे खुशी हुईल बाटै। खानेपानी क्षेत्रमा सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोगमा समेत आयोजना के टोली प्रमुख जयराज पन्ता लगायत से जानकी गाउँपालिका के योजना बनाके आगे बढ़ना आवश्यक सहयोग रहल बटैती योजना मन से सहयोग रहना फे बटैले बाटै। उसक अंजु वैद्य स्वागत करलक कार्यक्रम संचालन अनिल कुमार कुस्मी करल है। जानकी गांवपालिका वार्ड नम्बर 3 और 8 में पालिका के सार्वजनिक शौचालय निर्माण करल बाकलसे शौचालय में खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग में आयोजना अंतर्गत 1,56,59,756 रूपया के लागत में निर्माण करगिल बा। वीरेन्द्र विद्या मंदिर कैंपस व्यवस्थापन समिति के लाव निर्वाचित कार्य समिति के पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण करगिल बा। 10 गते हुईलक निर्वाचन मन से निर्वाचित कार्य समिति के कालिक पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण हुईलक हो। लाव निर्वाचित पदाधिकारी हुकरन निर्वाचन समिति के संयोजक दंडपानी पोखरेल से शपथ ग्रहण करलक हो। शपथ ग्रहण करैलक कार्यक्रम में पदस्थापन पाछे लाव निर्वाचित अध्यक्ष धनंजय प्रसाद त्रिमाल अपना वीरेन्द्र विद्या मंदिर कैंपस के विद्यार्थी हुईटी सोबियो सभापति व्यवस्थापन समिति के सदस्य अब के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष बनलकमा सक्कु जहान धन्यवाद देले बाटै। अध्यक्ष रिमाल से कैंपस में आपके चुनौती कलक नै शैक्षिक गुणस्तर के विकास करना रलक कहती अपना शैक्षिक गुणस्तर विकास में लग्न कैंपस प्रशासन तथा प्राध्यापक हुकरण के साथ और सक्कू सरकार वाला हुकरण फे साथ देह पर्ना बटोले बाटे। कार्यक्रम में कैंपस व्यवस्थापन समिति के पूर्वाध्यक्ष नवराज रावल ललित थापा निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र सिंह बम वीरेन्द्र साउत जगदीश्वर पंडित कैंपस प्रमुख हर्क भंडारी से शुभकामना मंतव्य धरल है। शुभकामना मंतव्य धरना व्यक्ति हुकरा अब के व्यवस्थापन समिति से कैंपस के भौतिक विकास से फे समेत गंभीर हुके गुणस्तर में जोर देना सुझाव देले बाटे। निर्वाचित समिति के सदस्य द्वारिका भंडारी से संचालन करल कार्यक्रम में स्वागत उपाध्यक्ष दयाराम संजाल करल हैं। कार्य समिति के सदस्य में महिला और रेखा अधिकारी दलित और राजेश कुमार तमत्ता जनजाति और किशन लाल दंगौरा थारू सर्वसम्मत हुई बाटे। खुला 5 जाने सदस्य की ओर से वीरेन्द्र साउत केशर सिंह ठकुरी नवीन अधिकारी धर्म बहादुर विष्ट झपत बहादुर बुढ़ा चयन हुईल बाटे। कार्य समिति के पहिल बैठक से व्यवस्थापन समिति के उपाध्यक्ष में वीरेन्द्र साव थे नियुक्त करलक हो। खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम पाच फिर सैबी सुनते रवी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: लो इतनी छिटो आमा बन लागो तो सकि सब काम कर काम कर विदेश जानु के नगर्ने के जन्म पड़े जैसे लगता
2: राम पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
0: विश्राम पाछे फेर्से स्वागत बा। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कंग्रेस के महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्गिल बा। कालीखुल निर्वाचन मंचे महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्गिल खो। निर्वाचन मंचे 10 जाने खुला महाधिवेशन प्रतिनिधि हो और समानुपातिक प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुई बताइल बा। खुला प्रतिनिधिमा कल्पेश कुंवर, प्रकाश शाह, आनन्द हमाल, चेतमान खत्री, बलिराम चौधरी, फकीर सिंह किरायत, नारायण दत्त मिश्र, रणबहादुर रावल, चिरंजीवी खनाल, निर्प बहादुर खड़का निर्वाचित हुईबाट उस्तक पेशागत विषय ओर बीर्ख बहादुर रावल उस्तक युवा त ओर नवीन अधिकारी ओ समेत संतोष खड़का समानुपातिकमा खस आर्यमा दत्त बहादुर विष्ट विष्णु प्रसाद गौतम निर्वाचित हुईबाट। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकायमा लौ भर्ना हुई विद्यार्थी उपकरण स्वागत तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम करगिल बा। अभियानमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम हे सम्बोधन गर्थी टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस के संस्थापक क्याम्पस प्रमुख तथा सुदूरपश्चिम राष्ट्रीय नीति तथा योजना आयोग के पूर्व सदस्य डाक्टर जगत बहादुर सिंह रावल से कृषि विषय लैके पढ़लाक विद्यार्थी हुकला बेरोजगार हुके बैठन नै परल बतैती कृषि पढ़ुआ विद्यार्थी हुकरन के भविष्य लक्षित रलक ओर से विद्यार्थी उकरण फे समेत सचेतो ईमानदार होके पढ़ना आग्रह करलबाट टीकापुर बहुमुखी कैंपस के प्रमुख डाक्टर धवीन्द्र रावल से कैंपस में सर्टिफिकेट के लाग केल नहीं होके अनुभव के लाग फे समेत पढ़े पढ़ना बतवेलेबाट माध्यमिक विश्वविद्यालय के उप प्राध्यापक शंकर न्यूपानी से पढ़ाई ओराइल पाछे विद्यार्थी हुकरा अध्ययन अनुसंधान कर पढ़ना रहल बतैती अध्ययन और अनुसंधान के लाग अनुशासन हो धैर्यता आवश्यक रहल बतोले बाट कार्यक्रममा विद्यालयमा पढ़ाई हुना विषय उसको अध्ययन करना विधि शैली स्टोर शाखा ल्याब लाइब्रेरी लगायत के बारे में फे जानकारी दैगिल बा। कार्यक्रममा उप प्राध्यापक राजेश झा, ल्याब शाखा के कमल बोहरा, स्टोर शाखा के उत्तर जोशी, उसको लाइब्रेरी के कमला उपाध्याय, लेखा के तपेन्द्र बहादुर भंडारी, परीक्षा शाखा के उप प्राध्यापक राम कुमार लम्साल लगायत से बोल रहे। कार्यक्रम के बारे में उप प्राध्यापक रितम घिमिरे से जानकारी कर रहे। कलश से संचालन उप प्राध्यापक प्रेम भंडारी कर रहे। सामाजिक जवाबदेहिता अभियंता के विकास के लाख प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम टीकापुरमा शुरू करगिल बा। 4 दिन के तालीम में टोल विकास संस्था के 20 से लेके 35 वर्ष उमेर समूह के 35 जाने सहभागिता रहल बाट टीकापुरमा स्थानीय शासन सुधार केला टोल विकास संस्था सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन करगिल बा। टीकापुरमा 264 टोल विकास संस्था 12 ठो वाड़ा स्तरीय संजालो 1 नगर स्तरीय संजाल रहल बताइल बा। प्रशिक्षण कार्यक्रममा उद्घाटन करते टीकापुर नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ममता बास्तोला से सरकार अकेली केल काम करना नहीं सकना रलगोर्से तोल विकास संस्था से समेत सहकारी करके उत्साहजनक पायल बटाइलबा अब संघ संस्था के सहयोग हुई कि रलक रलसे फेन ऐना दिन में तोल विकास संस्था के काम है नमूना के रूप में सरकार अपना संचालन करे पर्ना बतोटी साझेदार समेत काम करना पहल करने बाट सरकार संगे हरेक नागरिक फे समेत जवाबदेही हुई पर्ना में जोर देती नागरिक से समेत आपन जिम्मेवार ओ भूमिका विसरैना नहीं हुईना हो जवाबदेही हुई पर्ना बटोईले बाट खोजखबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछ फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
6: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तू मैं अब भी जाए
0: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
8: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै छुटे।

0: गरौ भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। संघ के सांसद के प्रतिनिधि सभा के बैठक आज दोपहर के 1 बजे सिंहदरबार में बैठती बा। आज के बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सोभिता गौतम, मेलमिलाप संबंधी दूसरा संशोधन विधेयक 2083 है, दफावार छलफल के लाख संबंधित समिति में पठाई कहना प्रस्ताव प्रस्तुत करना संभावित कार्यसूची रहल बा। कानून मंत्री गौतम से नेपाल के कानून आयोग विधेयक 2083, निशुल्क कानूनी सहायता संबंधी विधेयक 2083 दफावार छलफल के लक्ष्य संबंधित समिति में पठाई कहना प्रस्ताव प्रस्तुत कर गिलवा। बैठक में कृषि वन तथा पर्यटन मंत्री गीता चौधरी सेफे, राष्ट्रीय सभा में उत्पत्ति हुई संकोटकान पशु सेवा पशु रोग नियन्त्रण विधेयक 2083 दफावार छलफल केलाक समितिमा पठाई कहना प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न कार्यसूची रहलबा। उसँगका विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुञ्जले, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना संचालन विधेयक 2083 पारित गरी कहना प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नबाटै उसँगका तमाम चारथो सांसदीय समितिकै बैठक बैठतीबा। कञ्चनपुर के दोधारा चांदनी और भीमदत्ता नगरपालिका हे जोड़ना झुलुंगे पुल भटकलबा महाकाली लदिया के समेत बार से आज बिहान के करीब 8 बजे और समेत झुलुंगे पुल के एक भाग पूरे टूटल बटागिलबा। लदिया के बीच में रलक एक पिलर भटकल पासे झुलुंगे के समेत भाग फिर लदिया में बहल प्रत्यक्षदर्शी उक्रा जनाइल बाट। प्रहरी के अनुसार भीमदत्ता नगरपालिका 13 ओर समेत 6 नम्बर और दोधारा चाँदनी गाउँपालिका ओर समेत 3 नम्बर के पिलर भटकल बताइल बा। मालिका स्टील उद्योग के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनी जोशी से विपन्न बाल बालिका उक्रण स्टेशनरी और सरसफाई के सामग्री सहयोग करलबाट स्टील उद्योग समरलक पहल महीना में समेत कमाई से टीकापुर के आधारभूत विद्यालय के 21 जने बाल बालिका उक्रण विद्यालय में एक कार्यक्रम करके स्टेशनरी सामग्री वितरण कर गिले खो। अमेरिका में स्नातक अध्ययन करके लौटलक और स्वदेशमय लौटल रोशनी से समेत अपने पिता से समेत खड़ा करलक। मालिका स्टील उद्योग समारोह बाट अपना हे बाल बालिका मन पर्ना रलकोर से वहां उकरण केला कुछ करूं कहना हिसाब से अपन कमाई से वहां उकरण ऊपर खर्च करल जैसे बतौले बाट। विद्यालय के 21 जने बाल बालिका उकरण स्टेशनरी सरसफाई सामग्री और चॉकलेट वितरण करगिल। विद्यालय के प्रधानाध्यापक शांति कुमारी नेपाली बतौले बाट। और नेपाल शिक्षक महासंघ जानकी गाउँपालिका से गाउँपालिका के ध्यान आकर्षण करायल बा। हाल से बढ़ती रहलक महंगी दैनिक जीवन यापन लगायत तथा जिम्मेवारी से समेत ध्यान न धरती विकास में समेत शिक्षा विद्यालय सहायक वस्तक विद्यालय में सहयोगी तथा पालिका अनुदान शिक्षक उपकरण के उचित समय समीक्षा पारिश्रमिक के व्यवस्थापन के विषय में ध्यान आकर्षण कराई हो। यह समाचार संगे खोज खबर वायल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। दबाव बढ़ल पासे टीकापुर नगर पालिका के बजट खर्चा करना अख्तियारी, अब धीरे से खर्च प्रणाली नियमित हुईना। वीरेन्द्र विद्या मंदिर कैंपस व्यवस्थापन के समिति के राव निर्वाचित पदाधिकारी क्रम शपथ ग्रहण तथा पदस्थापन संगे सहकार्य करके काम करना अध्यक्ष के प्रतिबद्धता। सामाजिक जवाबदेहिता के अभियान तक विकास केलक प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम रोशनी जैसी से विपन्न बाल बालिका उपकरण स्टेशनरी और सरसफाई के सामग्री सहयोग। जानकी गाउँपालिका में स्मार्ट शौचालय उद्घाटन, सरसफाई में ध्यान देना सुझाव। लेखा बक्ला थारू भाषा खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकिए अब के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाक्रम सुनते विराम राम।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आदि था, काकना हो काकना हो। बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर भर आई थी रहत।
0: का हुई? कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटाका कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था?
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरास बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: आरती ब्यूटी एंड कस्मेटिक मा सौंदर्य र श्रृंगार को लागी विभिन्न ब्रांड का कस्मेटिक सामग्री पाइनु का साथ है थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लर को सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ
4: संचालक आरती चौधरी संपर्क नंबर 98624703383

0: नेपाल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टिकापुरको सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना। शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूलाई यही असोज 10 गतेदेखि 25 गतेसम्म आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु पर्ने भएकाले सामुदायिक वनका सम्पूर्ण सदस्यहरूले असोज 25 गते भित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। अध्यक्ष कर्ण बहादुर बुढा, शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टिकापुर 2 राजीपुर कैलाली।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैनै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़के घर से बाहर नहीं निकल छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो, यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9046747417।
5: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै

0: भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
4: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो दंडीफोर दाग खुजली हुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 98046 77417।

0: जाऊ भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्ध्याक 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा अपनाउकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनाउक्रा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन मा www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो ओ नेपाली पात्रो मा फेस सुन्ती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। खेल मैदान मा शौचालय निर्माण हुई पाछा खेलाड़ी हुकन सहज विधि। गेटा मा चिकित्सा शिक्षा संचालन के लागि आयोग के स्थलगत अनुगमन। धनगढ़ी में 30 वर्ष ऊपर के नागरिक जापानीज इन्सेफेलाइटिस विरूद्ध के खोप लगाए आग्रह। ओ सामाजिक संजाल के दुरूपयोग नियंत्रण के लागि विधेयक तर्जुमा के तैयारी विधि। आप खोज खबर विस्तार में। सुवर्णपुर खेल मैदान में शौचालय बनल पाछ खिलाड़ी तथा यहां के स्थानीय नागरिक सहज हुईना हुईलवा। खेलकूद के समय में खिलाड़ी हुकन शौच कर सहज हुईना हुईलवा। कलशे शौचालय निहुबेर फोहर फे कम हुईना हुई पाछ वहां नागरिक हुक्र फे खुशी हुईलवाट। सुवर्णपुर स्थित खेल मैदान में सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुई पाछ खिलाड़ी हुकन खेलकूद के समय में न सहज हुईना हुईलवा। जानकी गांवपालिका वडा नंबर 3 के सुवर्णपुर खेल मैदान में शौचालय निहुबेल खेलकूद के समय में बनोमन दिशा पिशाब कर जायपना बाध्यता बा। तर अब शौचालय निर्माण हुई पाछ नागरिक हुकन सजिलो हुईना हुईलवा। शौचालय निर्माण हुई पाछ यहां के नागरिक फे खुशी हुईलवाट। यी खेल मैदान में जानकी गांवपालिका स्तरीय खेलकूद हुईना के संग अन्य समय में फे खेलकूद हुईना करल बा। खेलकूद हुईबेर खिलाड़ी हुकन बनोमन दिशा पिशाब कर जायपना बाध्यता रह। कलशे अब शौचालय निर्माण से सहज हुईना जारकी गांवपालिका ओडा नंबर 3 के ढोरिया कठरिया बटुलबाट। बरघर रामकृष्ण चौधरी फे शौचालय निहुबेर खेलकूद ख्याल ऐना लड़का पर्कन ढीर समस्या हुईना करल रह। तर अब सजिलो हुईना कैक वहां बटुलबाट। यी ठावन शौचालय निर्माण हुईना कलक धीर मजा बाट हो। काकर कि यहां खेलकूद मैदान बा। खेलकूद मैदान मन धीर लड़का पर्का खेल ख्याल आप हुकन सहजता के संग यी शौचालय से बाल बालिका सुरक्षित हुईना। जानकी 3 स्थित भिरकुटी माध्यमिक विद्यालय सुवर्णपुर के विद्यालय व्यवस्थापन समिति सरिता शाह बटुलबाट। बरघर भीमबहादुर चौधरी फे शौचालय निर्माण लेकन यहां ख्याल ऐना विद्यार्थी हुकन मजा हुईना बटुलबाट। सार्वजनिक शौचालय बनल पाछ खेल मैदान में खेल ख्याल ऐना खिलाड़ी हुकन कलहक नही सहज निहुना हो। अन्य आवत जावत कना नागरिक को स्थानीय हुकन फे मजा हुईना हुईलवा। शौचालय बनल पाछ खेलकूद के समय में हुईना फोहर फे कम हुईना हुईलवा। ओह मार सार्वजनिक शौचालय बनना मजा हुईलक स्थानीय फूलकुमारी चौधरी बटुलबाट। सुवर्णपुर में बनलक शौचालय में महिला पुरूष और अपांग कैखन 3 ठो शौचालय व 1 ठो काउंटर कोठा निर्माण हुईलवा। जानकी गांवपालिका ओडा नंबर 3 और 8 मन सार्वजनिक शौचालय निर्माण करलबा। शौचालय खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत 1,56,99,756 रूपया के लागत मन निर्माण हुईला खुट। कैलाली के गेटा स्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम संचालन के लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग के टोली स्थलगत अनुगमन शुरू करलवा। विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम संचालन के अनुमति तथा विद्या

0: प्रदेश सरकार मातहत के अस्पताल हफे विद्यार्थी के प्रयोगत्मक तथा क्लिनिकल अभ्यास के लिए प्रयोग करना तैयारी कई गिलवा वह अनुसार संबंधित अस्पताल के भौतिक अवस्था उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा जनशक्ति तथा विद्यार्थी अभ्यास कराई सक जिना क्षमता बारे समेत आयोग के टोली अध्ययन कर बा गेटा मन चिकित्सा शिक्षा संचालन के लिए विश्वविद्यालय पहल चरण मन एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ओ एप्टोमेट्री लगायत के शैक्षिक सामग्री संचालन करना तैयारी कलबा यी कार्यक्रम संचालन में आयल पाछ सुदूरपश्चिम के विद्यार्थी हुकन चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययन के लागि प्रदेश बाहर जाए पना बाध्यता कुछ हटसम कम हुईलक अपेक्षा करगिलवा धनगढ़ी उपमहानगरपालिका के नगर प्रमुख गोपाल हमाल 30 वर्ष ऊपर के सक्कू नागरिक हुकन जापानीज इन्सेफलाइटिस विरूद्ध के खोप लगाई आग्रह कलबाट धनगढ़ी उपमहानगरपालिका के 19 ओडा मन असोज 8 गति से शुरू हुई खोप अभियान असोज 22 गति सम्म संचालन हुने स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली के सूचना अधिकारी मीन बहादुर धामी जानकारी देलबाट खोप अभियान अन्तर्गत 30 वर्ष ऊपर के नागरिक जापानीज इन्सेफलाइटिस विरूद्ध के खोप लगा जैतिबा नगर प्रमुख हमाल अपना समेत खोप लगैटी अभियान में सहभागी हुई वो संक्रमण से सुरक्षित रह नागरिक हुकन आग्रह कलबाट उपमहानगरपालिका आपन लघवना ओडा स्वास्थ्य कार्यालय से समन्वयक खोप लगाई सक्कू नागरिक अनुरोध कलबा स्वास्थ्य कार्यालय लक्षित उमेर समूह के नागरिक अभियान के अवधि भीतर खोप लगाकर सुरक्षित रह आग्रह कलबा खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछैनी बाटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटना का घटना बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछु भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडी र पछाडी हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होस्या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अर्को लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
2: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
5: बीतल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत सुवार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091 560

0: 0995 ओ मोबाइल नम्बर 9848423।
1: सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
2: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
1: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
2: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
1: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
2: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
1: सिर्जना सुनचाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
2: सिर्जना सुनचाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9895443893।
3: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। कञ्चनपुरके डोढरा चाँदनी ओ भीमदट्ट नगरजोना महाकाली लद्याउ पर्के झुलुङ्गे पुलमा हुइलक क्षतिबारे सरकार प्राविधिक अध्ययन शुरू कलबा। आज बिहान झुलुङ्गे पुलके एकठो स्पान बीचके टावर नै खसल पाछा हाल पूर्ण रूपमा आउजौ बन्द हुइलबा। कञ्चनपुरके प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइराला आज बिहान क्षतिग्रस्त पुलके निरीक्षण गर्दी पुल कसीका क्षतिग्रस्त हुइलकना बारे प्राविधिक अध्ययन आग बढ़ैलक बटुइलबाट। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाके अनुसार आज बिहान पुल डिसब्यालेन्स हुइलक सूचना पाइल लगत्त सुरक्षाकर्मी परिचालन कैक तत्काल आवजावट बन्द कैगिल रह। बिहान करिब 8 बजे उहर पुलके एकठो भाग नै लद्यामा खसल रह, अब पुल से आवजावट गर सक्ना अवस्थानी हो। पुलके एकठो स्पान बीचके एकठो टावर नै खसल अवस्था बा, अब आवजावट हुइस्याकल अवस्थानी हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइराला कल कोइरालाके अनुसार पुलके क्षतिके प्राविधिक कारण पहिचान गर सुदूरपश्चिम प्रदेशके यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतके पूर्वाधार निर्देशनालयके प्राविधिक टोली बलागिल बा। ऊ टोली स्थलगत निरीक्षण गर्क पुल कसीको क्षतिग्रस्त हुइलकना प्राविधिक विश्लेषण गरिया बा। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमेल सिन्हा भोटेकोशी बाढ़ीकै कारण रसुवा नुवाको धादिङ लगायतकै जिल्लाकै दूरसंचार सेवाकै संरचना मन करिब 8.85 करोड़ रूपियाँ सेफे धिर छेटी हुइलक बटुइलबाट। प्रतिनिधि सभा बैठककै विभिन्न समयमा उठलक विषयमा जवाब दिति मन्त्री डाक्टर तिमेल सिन्हा ऊ क्षेत्रकै 120 साइटकै सेवा सञ्चालन हुइलक मन 3 ठो पूर्ण रूपमा क्षति हुइलको 83 ठोमा आंशिक क्षति पुग्लक जानकारी देती आंशिक क्षति पुग्लक साइट हुकनमा सञ्चालनमा आवश्यकलक जानकारी करेलबाट। वस्तकन उह क्षेत्रमा रहलक 65.3 किलोमिटर फाइबर साइन नेटवर्क मध्ये 37.9 किलोमिटरमा क्षति पुग्लक मन हाल 27.4 किलोमिटर मर्मत सम्भार होक सञ्चालनमा ऐलक बटुइलबाट। 80 बाढ़ीकै कारण गण्डकी प्रदेशकै विभिन्न जिल्ला हुकनके 291 साइटमा न क्षति पुग्लक मन 246 ठो साइट सञ्चालनमा आसेकलको बाँकी 45 ठो साइट मन काम हुइटिरलक मन्त्री डाक्टर तिमिल सिन्हा जानकारी देलबाट। मन्त्री डाक्टर तिमिल सिन्हा पाछक समय बढ़ती गेलक सामाजिक सञ्जालके दुरूपयोगके नियन्त्रणके लागि सरकारके निकाय हन सक्रियता बढ़ैलक हो। आवश्यक कानूनी व्यवस्थाके लागि सरकार आम संचार विधेयक प्रेस काउन्सिल विधेयक तर्जुमाके तयारी हुइटिरलक जानकारी गराइलबाट। प्रतिनिधि सभाके कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतकै उपसमिति कारागार तथा हिरासतकै अवस्था अध्ययन गर्क सुझाव सहितकै प्रतिवेदन बुझैलबा। बुधबार उपसमिति नीतिगत ओ कानूनी सुझाव तथा सिफारिश सहितकै प्रतिवेदन बुझैलक हो। उपसमिति जेएनजी आन्दोलनमा सहभागी हुकनकै मुद्दा फिर्ता लिएक कारागार से थुना मुक्त गर सिफारिश कलबा। 2082 भदौमा हुइलक जेएनजी आन्दोलनकै क्रममा पूर्व पक्षकै लागि थुनामा रहलक हुक्र मध्ये गम्भीर अपराधमा संलग्न बाहेक औरके मुद्दा फिर्ता लिएका थुनामुक्त गर उपसमिति सिफारिश कलक हो। सिफारिश बारे समिति छलफल फे सरकार हन निर्देशन देना बारे निर्णय लिहिआबा। खोज खबरमा फेरफे विश्राम पा छैन नि बाटी सुन्ति रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
4: आइ हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मनै
3: घर सिजार सेक्ल
4: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए ता था पाए
5: यूपीवीसी ब्रांड के मुआ का द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई लग मुआ का द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848143426
6: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरोसाइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
7: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबारका दिन
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
6: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन लगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागु पदार्थ सेवन गर्ने
8: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला
7: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार
9: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजे बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772
3: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा कैलालीमा चोरी मुद्दामा 22 दिन कैद सजाय तोगिलक एक फरहार प्रतिवादी पक्राउ परलबाट जिल्ला अदालत कैलालीकै फैसलासे चोरी मुद्दामा 22 दिन कैद सजाय तोगिलक धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 5 बैठना 34 वर्षीय राजकुमार कठाए ठन प्रहरी पक्राउ कलक हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीसे खटगिलक प्रहरी के टोली हुकन धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 3 मिलन चोक्से पक्राउ कलक जनागिल्बा प्रहरी कठाए ठन फैसला कार्यान्वयन के लागि सम्बन्धित निकायमा बुझेना प्रक्रिया आग बढ़ैलबा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सांसद हुकन आफन विज्ञता अनुसार मुलुककै विकासमा योगदान दिए आग्रह कलबाट बुधबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालयमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभामन प्रतिनिधित्व गर्न प्राविधिक पृष्ठभूमिकै सांसद हुकनसँगकै छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्री शाह हुकन राजनीतिक विषय सेफे बढ़ी दीर्घकालीन नीति ओ लौ विचारमन केन्द्रित हुई आग्रह कलबाट प्रधानमन्त्री शाह कल आफ्नो हुक्रा आपन प्राविधिक विषयमा जानकार हुई मुलुकके नीति निर्माणकना ठाउँ मन हुई देश विकासके लागि आपन ज्ञान सिप ओ अनुभवके अधिकतम प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री सांसद हुकन हन पार्टी राजनीतिकके सँग आपन प्राविधिक दक्षता ओ व्यावसायिक पहिचान हफे प्राथमिकता मन ढर सुझाव देलबाट निर्वाचन वा राजनीतिक गतिविधिके समयमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुना स्वाभाविक हुइलसे फे अन्य समयमा देश विकासके लागि प्राविधिक विषयमा केन्द्रित हुई उहाँ आग्रह कलबाट घण्टौ लम्मा ट्रान्जिस ओ विमानस्थलके शास्ती बेहोर्ती एसियाली खेलकुद एसियामन काश्य पदक विजेता नेपाली महिला कबड्डी टोली काठमाडौँ आपुगलबा टोलीह बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत कैगिल्बा बारीकै कारण नेपाली टोली करिब 40 घण्टा थाइल्याण्डकै बैंकक विमानस्थलमा अटकल रह महिला टोलीकै सँग पुरूष कबड्डी टोली फे स्वदेश फर्कलबा नेपाली टोली सोमबार बिहान 11:55 बजे जापानकै ओसाकासे बैंककै लागि उडल रह दिनका 3:35 बजे बैंकक पुगलक टोली बुधबार बिहान कलहक उहाँसे काठमाडौँकै लागि उड सफल हुइलक हो यह समाचार के संग खोज खबर और आयल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से खेल मैदान में शौचालय निर्माण निर्वाचक खिलाड़ी हुकन सहज हुई गेटा मनोचिकित्सा शिक्षा संचालन के लिए आयोग के स्थलगत अनुगमन धनगरी में 30 वर्ष ऊपर के नागरिक जापानीज इन्सेफ्लाइटिस विरूद्ध के खोप लगाई आग्रह व सामाजिक संजाल के दुरूपयोग नियंत्रण के लिए विधेयक तर्जुमा के तैयारी हुई लिता आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार नेपाली भाषा में 6 बजे खोज खबर सुन सकबी आवक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती मई गीता फिर विदाई दू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम।

0: काकी
1: का कहतो भैया
0: नेता घर कहाँ बटिन
2: दादू
3: हजुर
2: कहाँ समझिला हो
3: पहलमानपुर से मनोहरी
0: आगे सम छोड़ देवी ना
2: बाबू सुनो ना होकर नौका हुई
1: रितु दीदी

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब ही जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: टीकापुर नगर पालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम संबंधी सूचना
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जा सेकल?
2: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का?
1: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्रफे पटानी हुइन कि गुंगुआ बुढो हो ना, कबु कहुरा घुम जाए त थाहा पाए।
3: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नई बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नई ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: सेटो लड़का सामान्य है।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई? कबू लड़का कॉपी हेरा कई ठो, कबू पेंसिल हेरा कई ठो, कबू झोले फटा कई ठो, बढ़िया ठो से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था?
0: कहाँ से लंबो? वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लबाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी।
1: लिया लिया मैं अभी ही जाबू रख गई झोला उद्योग में। रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए। एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड को नवौ वार्षिक साधारण सभा होने सम्बन्धी सूचना। आउँदै गरेको बड़ा दशैं तथा शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत एवं छठ पर्व को अवसर में हामी हाम्रा सम्पूर्ण शेरधनी शुभचिन्तक, पत्रकार, समाजसेवी एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुवा, दाजुभाई, दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मिति 2083 साल कार्तिक 9 गते सोमवार का दिन टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा हुन गइरहेको जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको नवौं वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि सादर आमन्त्रण गर्दछौ। साधारण सभा हुने स्थान टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा, समय बिहान 10 बजेदेखि। जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, टीकापुर, कैलाली। थप जानकारी को लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-641 र 98-432-86-713।